जन्मजात तो कठोरता है। असी चाहिए कि पत्थर नू नरम कर दईए, मोम कर दईए, ये साडे वस की गल नहीं। हां असी उसनू पीस के बारीक जरूर कर सकते हां, उदी मिट्टी जरूर बना देंगे, पर जिस वक्त पीस के बारीक कीता होया जो विशेष प्रकार का पत्थर सीमट का रूप धारण कर लैंदा, बारीक भावें कितना हो जाए पर उसनू फिर भी बचा बचा के रखना पैंदा कि इहदे उत्ते कोई चार बूंदा पानी दियां ना पै जान, इसनू किते सलाब ना लग जाए, इस करके उसनू ऐसी छां ते रखिया जांदा वी जिथे उसनू किसी प्रकार की सैलाब ना लगे, क्योंकि ऐसा जिस वक्त भी उसनू थोड़ा जिहा सैलाब का असर होया, पानी का असर होया, मुड़ के उसने अपने उस रूप में चले जाना है, मुड़ के फिर पत्थर बन जाना है। असी भावे पी के उसनू बारीक कर दिता पर जिस वक्त मुड़ उसनू अपना चांस लगया वह मुड़ के अपने उस रूप अंदर आ जाता है, बल्कि अगे नालों भी सख्त बन जाएगा। फुल का सुभाव है खुशबू देना, सुगंधी देना, सुंदरता बंडना। फुल भावे किसी गंदगी के ढेर से क्यों ना पैदा हो जाए, कोलों की लंघन लगिया लंघन वाले ने जरूर वह सुगंधी देवेगा। मेरे जैसा मूर्ख आदमी उसनू सवाल कर सकता है भी भलिया तू तो एक गंदगी के ढेर से पैदा होया, तेरे को खुशबू नहीं, तेरे को बदबू आनी चाहिए है, क्योंकि गंदगी का ढेर है। पर आखते हैं क्योंकि फुल का एक जबानदरू सुभा है, जन्मजात का सुभा है, असी उसनू बदली नहीं कर सकते। वो उसे ढंग दे नाल अपनी खुशबू भी वंडदा है, उसे ढंग दे नाल अपनी सुंदरता भी वंडदा है। इसे तरह दे नाल जानवरां दे भी अपने सुभा हन, वस्तुआं दे अपने सुभा हन। सप का जन्मजात तो एक सुभा है डंग मारना ते दूसरे बंदे अंदर जहर प्रवेश करना। जे असी भावें उसनू देवता मान के पूजा भी उसकी शुरू कर दईए, उहदे अगे दुध भी पा पा के उसनू असी पिलाना शुरू कर दईए, ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर वचन इस प्रति लिखिया, कहिंदे सप्पे दुध पियाई है वे मुक्ति सट्टे, मुड़ के फिर भी मुंह तो विखी सुटेगा अमृत नहीं सुटेगा। इस करके हर वस्तु के जन्म जात के अपने अपने सुभा हैं, असी उन्हां नूं बदली नहीं कर सकते, साडे बस विच नहीं। पर सतगुरु बादशाह महाराज जी जिस वक्त मैं आप जी के जीवन काल वाले पासे ध्यान मार के वेखदा कि तुहाडे जीवन काल अंदर ऐसियां ऐसियां घटनावां होईयां हन जिन्हां राही असी वेख सकते हाँ कि असी जिस प्रकार की किसी की कोई अपने जन्म का सुभाव जिदा का भी क्यों ना हो, पर तुहाडी कृपा दृष्टि जिस पासे भी चली गई उसने सुभाव उस बदली कर दिता। असी भावें पत्थर दे पुजारी ते नहीं आ पर श्री पंजा साहब नूं असी कदे भी भुल नहीं सकते। अज भी श्री पंजा साहब पाकिस्तान विखे वह स्थान सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज का पुकार पुकार के दुनिया के लोगों नूं यह गल आख रहे हैं कि मेरे ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज की कृपा दृष्टि हुई है। अज भी उत्थे चले जाओ उस पंजे दे विच अपना हथ ला के मनुख वेखदा कितना मुलायम कितना सुंदर वह पंजा लग्या होया, एक पत्थर के अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी की कृपा दृष्टि ने उसनू मोम बना दिता है। रीठे का अपना जन्म जवाब का समा है, वह किसी वेले भी मिठा नहीं हुंदा कौड़ा हुंदा, पर जिस रीठे थले सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी जाके विराजमान होए हैं उस रीठे नू अज भी उस पासे मिठे फल लगते हैं जिधर सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जाके निवास किया। एक छोटी जी गाथा मैनू चेते आ रही है, सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी जंगल चों दी गुजर रहे सन, जंगल चों गुजरदिया होया बड़ा बियाबान एक खतरनाक किस्म का जंगल सामने आ गया, ते उस जंगल के अंदर सामने की वेखिया बड़े सुंदर किस्म के फल लटकते हैं, सारा जंगल फलां का आ गया, बड़े वेखण च सुंदर फल हैं। मरदाने का मन ललचाया इस गल लई कि फल खाण नूं जी कीता, तो सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं आखण लग्या कहण लग्या जी गरीब नवाज पातशाह नेड़े तेड़े कोई किसी प्रकार का कोई पिंड कस्बा
کوئی شہر گراں نظری نہیں آندا، جنگل پتہ نہیں کتنے دور تک ہے جی۔ گریبن واج پادشاہ جی پتہ نہیں کتنی دیر تک، کتنی دیر بعد جا کے کسی نگر شہر گراں پہنچا گے، جی کرپا کرو آگیا بخشش کرو تے میں اے تھوڑے جے پھل کھا لواں۔ سدگور بادشاہ مہاراج جی نے آخیا، کہن لگے مردانے آ اے پھل نہیں کھانے، انکار دا اشارہ کر دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر منگ کیتی، تے وار وار دو تین وار وار منگ کرن تو بعد سدگور نانک صاحب پادشاہ مہاراج نے آخیا، کہن لگے مردانے آ سامنے والے درخت نالوں جا کے پھل توڑ تے کھا لے، پر ایک گل دا خیال رکھی، پلے نہیں بننے۔ مردانے نے پھل توڑے، منہ وچ پائے، جیوں جیوں کھاندا ہے تے مردانہ بڑا حیران ہویا، کہن لگے اتنے پھردے میٹھے پھل، اتنے سوادشت، اتنا سندر پھلاں دا اے بگیچے ہی منو بنیا ہویا اے سارا جنگل، تے سدگور نانک پادشاہ مہاراج جی مینوں کھان تو کیوں روک دے رہے؟ بلا میں بلخ بخارے تک گیا، افغانستان تک گیا، کابل کندھار تک گیا، سندر میوے مینو کھان نو پراپت ہوئے، ودیا تو ودیا پھل میں کھا دے، پر اج تک اتنی مٹھاس مینو کسے وچوں، اتنا سواد مینو کسے وچوں نہیں آیا۔ تے اس لالچ کر کے مردانے نے ایک مٹھی بھر پھل جڑے سن اپنی نال جیب

0: सेवक इत कर कीर्तन करते हैं बाणी पढ़ते हैं जी चाकों को बेंत.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

जब लवनी भाग मिलार तुझे तब नौ भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत्व विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोर गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है ने कोई संकट भी आएगा ते 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतां दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अज गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया साहबान ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे संगे पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी देख अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरदी है समुद्र में मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे भी नहीं आता पर तक लो प्यारी सास सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर दे अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा दे प्यार वाली आवाज भावे उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा दे कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

बाबा ने अपने प्यार दी मिसाल कितनी सुंदर। ऐ मेरे दाता जी दिल करे चातर कृपा न उतरे हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजियो गुरु कुमारी गुरु दर्शन। मैं गंगा जी कहते प्यार वाले तेरे सिख हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन। अगे गुरु की संगत कीर्तन करके हम आराम कर रही साहब जी पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संगत वास्ते कड़ा प्रशादी देंगे। जथेदार जी उठ के बैठ गए सारी संगत को सावधान किया प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन में प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद ही दे जा रही है उठो पहले अरदास करें जो भी गुरु वालों दात मिलती है ना पहला अरदास करें ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरुओं की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद नशा सुख मंदिर किसे प्यारे तो सारी संगत सावधान जथेदार ने गल पला पाके अरदास की थी ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख लेके आया है सिख नू नाम दान बख्शी सिख नू सिखी दान बख्शी। अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज असी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल अरदास साहबा ने अपने हथ सारी संगत को कड़ा प्रसाद एक गंगा जी हम जल भी किया साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाह जल छकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहफल कर दी सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का कर पक्का कर दिया प्यार क्या कि पर

0: सिखाने तुझी सतगुरु आप समझ जिरके चोले रसड़े प्यारे कल तिना के पास सूढ़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की। बाबा बुढ़ा जी पहुंच गए जाके साहबा के हथ जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूज करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तू ही नहीं कॉपी अगले बाबे यार एने सोने सुख तू भी छोड़ पाशा इतने बैठे हो जोड़े पे चार हजूर कह लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा धन गुरु नानक के दर्शन की तीर तरह नीज ला के वेखे जोड़ा किसता है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक पर संगत हर प्रभु गुरु कितने रहेंगे नेत्रा चाहे हिरदे पे भी प्यारी साथ गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने पातशाह पर आप इतने सुन संगत वाल वेख इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जी पुल की जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़े जेदे को जी दान लेना सी बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा से हजूर उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान हुए हरिमंदर साहब जी का ध्यान रखे प्यारे शासन बोलो संगत दी नजर नहीं तरप्त वाजू जा रहे गुरु ने कोशिश की थी क्या प्यारी शासन रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे हजूर कह लगे नहीं तुम इतनी खेचला की हजूर कह लगे थोड़े प्यार के उत्ते प्यार की ज्योति प्यारे दे नक्श लाओ हजूर कह लगे पहला पंक्ति पढ़ो जी रस्ते पड़ी दर्शन प्यासी जिन स्वराज जितवा वर्दे नीत संगत ने फिर घर के पड़े आ अगली पंक्ति पढ़न लगे हजूर कह लगे ठहर अगली पंक्ति तय खोल कपट गुर मेले आ नानक हर संगीत आओ फिर थोड़े पहला मन दे किवाड़ तक खोलिए मन दे किवाड़ दरवाजे जे पूरा गुरु ही खोल सकता दर्शन दीजिए खोल किवाड़ ओ किवाड़ मालिक हो जिसे बख्शिश कर किसी महापुरुष ने लिखे मुर्शद ने जद बूहा लाया मुर्शद लो मुर्शद ने जद बूहा लाया अंदर जाती पाई हर पासे गुरु नानक बैठा निरंकार सबलाई चरना विच पदम है सोना जो दुनिया नू ठारे चल सूरज इथे पानी भर दे मानक मोती सारे ला दिता हुआ सज्जन ठाक का ला दिता सी भूमि डाकू का ला आओ प्यारे हो मेरे बच्चे थोड़ा भी बुआ ला सारी संगत अगे हुई हजूर ने अमेर दृष्टि सारे वो थकिया बख्शिश की नी देखिया जपो सतनाम नाम भी बख्शिश द्वारा ओ नाम रसना द्वारा हिरदे से जाके वसिया प्यारी सार संगत नाम का धक्का जिसने वजह भूआ फुर गया अंदर से बाहर नाम ही दिस लग गया अखोत्री हजूर कह लगे हूं पढ़ो संगत ने फिर पढ़िया खोल कपट गुर मेले नानक हरशायदी बख्शिश हजूर कह लगे जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है गुरु सहमत करता है बख्श गुरु ने बख्शिश संगत से की थोड़े उत्ते भी की है क्योंकि जो संगत को लैन वास्ते पंजवा गुरु नानक आप गया है तो भी गुरु नहीं लिया कुछ एक दिन नहीं केड़े पाठा वाले हो प्यारे संगत एक वीक पूरा माताओं भैणा बच्चियां गुरमुख बजुर्ग वीर अदी नागा नहीं पाया एक नागा भी कीर्तन च नहीं पाया बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु ने दर्शन च नागा नहीं पाता गुरु मेरा च नागा नहीं पाता यह तो सिद्धि है सारी संगत ने मत्था टेकिया पातशाह एडी रहमत हजूर कह लगे हाँ सात संगत ए प्यार गुरु कार्य ए बख्शिश है चल सर्व गुरु एक पैंदा जाए चल सदगुरु और पैदा आई दुर्गा जी के कोल सिख ने फिर बेनती कर आई साहब यह अवस्था केड़ी है जो गुरु ने इन्हों बख्शी है हजूर आई साहब जी कहने लगे सहज अवस्था सहज अवस्था ज्ञान को कह इन्हों उधर बाहर गुरु का चाणना कर कह लगा भाई साहब अलह दसो सहज अवस्था गुरु की कृपा द्वारा आती है और भी कोई साधन है ऐसा जी कह लगे छह पौड़ियां सहज अवस्था जी सहज अवस्था ज्ञान है वह छह क्लासा छह लैसन के तो भाई साहब जी के गुरुदे गुरमत रीते गरीबी पहली पहली क्लास दुनिया के पदार्थ मिले हैं तो मन के अंदर निम गरीबी का मतलब निमत है नीरा पा लो कपड़े मैड़े पा लो गरीबी का मतलब है निमत दुनिया के पदार्थ मिले हैं सिख अरदास कर दिया तू जागे अरदास तुम्हारी जी और फिर सब तेरा कौ नानक सब तेरी वडियाई कोई हम किस कोल घुमाया गुरमुख ने गरीबी है दूजी पौड़ी कहड़ी है पर नारी देने इतना उच्चा करैक्टर सिख न पर घर पढ़ तुल प्रिया परमात हो सिख धर्म कितना पवित्र जी एक नारी जति है जति सती नहीं जाए गुरु से पर नारी दे नेड़ ना जाए तीजी पौड़ी पर दर्दे हाथ ना लावे प्राया तन बेसिक वास्ते मिट्टी दी चौथी पौड़ी पर निंदा सुन आप बतावे किसी भी निंदा ना करनी है ना कुछ एक मेरी नानक सर बाबा जी कह लगे संगत रूप में निंदा ना करे कर एक उठ के प्रेम ही खड़ा हो गया बाबा जी साडा तो सुभाव बन गया निंदा कर जेदे को मतलब हल हो जाए वो उस कर लग जाती अवे जानते भी है भी आदमी चंगा नहीं पर स्वार्थ पूरा होया तरीफा ने जी बड़ा उपकारी ए वर्गा सिखी जे मतलब हल ना हो निंदा शुरू कर साडा तो सुभा है बाबा जी कह लगे चंगा निंदा भी करे करो उस भी करे सारी संगत हैरान होगी बाबा जी हमें तुम्हें किया कि नहीं करनी चाहिए बाबा जी कह लगे जी थोड़ा सुभाव बन गया है तो निंदा भी करो उसत भी बाबा जी और किस तरह बाबा जी कह लगे जी निंदा करनी है तो अपनी करो सब हो गए निंदा करनी है तो अपनी करो जी उसत करनी है तो मेरे तन गुरु करो वाजे बढ़ गए तेरे भला ही भला तो दूजी निंदा किसे निंदा भली किसे की पर निंदा सुन आप हटावे ते पनवी पौड़ी केड़ी है थोड़ा समय थोड़ा ही भावे थोड़ा सोना ते थोड़ा खा ये भी बेनती की थी बाबा जी कोई मिकदार नहीं लिखी भाई साहब जी कितना थोड़ा जे अगे अठ रोटियां खानी है तो हम पंज खा ली जे अगे बारह घंटे सौने और दस घंटे सौने तो बाबा जी कहने लगे नहीं इतना थोड़ा खाओ जिने सारा दिन शरीर पीड़े ही ना खटे डकार ही ना मुसलमान रोजे रखते हिंदू मत च वर्त रखे जाते हैं यह मकसद की है कोई रोजिया से वर्तान कोई हम सब खुश हो जाए यह मकसद यह है कि रोजा रखना थोड़ा खाना जिद ना शरीर की शुद्धि आम डॉक्टर कहते डॉक्टर जी शरीर भारी भारी रही है एक दिन फाका कर ले मतलब रोजा रखना यह रोजा ही है ये शरीर जोड़ा है वो ठीक हो जाता है तो गुरु ने कहा है कि मेरा सिख एक दिन रोजा या वर्त नहीं रखता गुरु का सिख रोज ही रोजा रखता है और किस तरह थोड़ा समय थोड़ा ही अल्प आहार कलगी अल्प आहार सुन इतना थोड़ा खाओ जिंद खटे डकार ही ना आए इतना थोड़ा खाओ जिंद शरीर सारा दिन पीड़े ही ना सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट कुर्सी मुख बोलने मार नाद किए छत्ती अमृत पाओ एक जग को नजर करे माता और खाना कुछ ही खुआर जिस खाते तन पीड़िए मन में चले तो खाने न खाओ। ये जरा मन विकारी मन पूरे पास के जाओ और खाने छंड कितना थोड़ा समय बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा समय जिस अमृत वेला तो कि ना क्योंकि अमृत वेला खास तक छेवी पौड़ी केड़ी है ऐसा जी कह लगे सतगुरु का उपदेश कमाल गुरु का उपदेश जो गुरु का हुक्म है उन्हें चौड़े स्वागत कौने जो पति का हुक्म है लैट पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सर सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अंग छकना बाणी पढ़नी सत्संग में जुड़ना बुरे कमा छड़ना चंगे ही पले बनी ये गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है पर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुरु का उपदेश कमावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है तो भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन सहज अवस्था की प्राप्ति तो आप बार मिलियां संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी तन हो इतों के प्रबंधक भी तन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया हाल सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां भरिया बड़ी संगत जुड़ती अब गुरमुख माई आए एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नूह पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिखा जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई मालिक मेहर करे वस्तु सामू सदा लागे गुरुद्वारे देश बना लो कोई हर्ज नहीं गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक साहब श्री गुरु साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान यार सत्संग से जिते चार चीजा हो गई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर होवे अब कोई समा ज्यादा हो गया है पर ज्यादा होया जाया नहीं होया क्योंकि अब इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात दा तो कोई समा चढ़ गया अब सवेरे जिस वे कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिछली साल वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड हुई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्होंने हुक्म सचे है क्योंकि बाबा जी के पिंड के नेड़े ही रहने वाले सौकिया के रहने वाले उन्होंने हुक्म से तुहाडा प्यार पिपली साहब वाली साखी आप जी ने सब की समा कुछ ज्यादा होया तो समा सब है आई खड़ी लगती जो सौ साल भी आवे तो तुहाडे प्यार को वेख के सेवक का चित बड़ा पसंद है नहीं तो इतना चिर बहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनु प्रवचन दे पातशाह साढ़े से बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमित्री दे गरीबी ये सारिया पौड़िया असि इन्हों से चढ़ने की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंजिल साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मन यात्रा खत्म साडा जीवन अनंत साहब का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति करी अमृत वेले का प्रोग्राम।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। बई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागाए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी ओह गलत

या मंदिर में कौन बसाए। कहते जेड़े इस मूल नहीं बुझते उन्होंने मुतलक गुरबाणी च ये पंक्तियां दर्ज हैं, आप जी ध्यान नाल सुनो। कहते हैं

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनू हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ जड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, सुते किसी का जोर नहीं है, यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साढ़े सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साढ़े पास कुछ भी नहीं है इस तरह फील करते रहने, हालांकि साढ़े पास एक दुर्लभ वस्तु है जिड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वो साढ़े पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नू जे पिर तो वाहिगुरु तो दूर ले जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नू गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नू डोब दोगे, ये कुमला जाएगी, क्योंकि पिर तो दूर ले जाओ पत्नी नू तो वह कुमला जाती है, उदास हो जाती, वह मर जाएगी। इस शरीर नू वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वो इसकी जिंद जान है, ये मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। ये रब की कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखा सी, ये मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लिया जा सकदियां, वो वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईया जा सकदियां। इस मंदिर दा सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है। कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक कोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वह सवार दे उत्ते सवार होई पई है, वह सवार दा आखा नहीं मनदी है। कहिंदे इस दे उत्ते सवार होवो भाव, इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानू एडिक्शंस हो जांदियां हन उदों असी बॉडी दे स्लेव हो जाने हैं, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वो कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तमो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असी अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असी ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने हुए पानी दे नाल भरे होया नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हैं। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख उत्तम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है। अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मांड दे विच है वो इस दे विच है। अते ये एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शंस दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे ओ होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उसदियां विधियां की हैं, उस कमल नूं खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दियां की रिक्वायरमेंट सन। ये कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दिओ टाइम सिर ताकि इस लड़ी नूं असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नूं जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनूं जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए कि उस तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफल हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नूं समझ लईए और शरीर नूं समझन तो बाद इसनूं सानूं साधना पैना है, इसनूं सानूं फिर तड़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नूं साधना पैना है, इस उते बहुत सारा कम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है। वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नूं समझ लवांगे, इस नूं साधना किवें है वह समझ लवांगे, इस शरीर के अंदर की है वह समझ लवांगे, उस तक पहुंचने का रस्ता की है वह सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नूं एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नूं पाउण नूं महाराज ने कहा है उस नूं असीं पा लवांगे, जीवन की यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखेवा प्रेम नाल इस पंक्ति नूं गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

0: हम देखिया समुंदवरों सिर हम देखिया एक वस्त्र अनूप दिखाई एक वस्त्र अनूप दिखाई
1: गुरमुख टूंग टूंगे दिया
0: हर सज्जन लता राम राय कंचन काया।

नौजवान कहन लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

मस्त मैं भोगी त्याए त्याए भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

बाजत बसंत अर पैर वह डोल राग। ये 11 रागों का गुलदस्ता 11 राग इकट्ठे आप जी ने सरवण किए हैं, जो कि गायन विच ये बहुत कठिन हैं। तो सत आप संगत की आशीर्वाद सदका ही मेहनत करके यहोजी चीज़ा जो गायन कीतियां जांदियां हैं। तो सतसंग जी, ये स्वरां का मिलाप है, जो सत स्वरां नूं गुरुआ ने, गुरु नानक साहब जी ने, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने, सारे गुरु साहबां ने सत स्वरां दे विच गाया है। तो शरंदे दे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इन्हां सत स्वरां विच कीर्तन किया, सारे गावां पा दा निशा, ये सत स्वर। तो इन्हां स्वरां नूं गुणी जना ने, विद्वान लोगों ने, ऋषियां ने, मुनिया ने, पीरां पैगंबरां ने, सारे ने इन्हां सत स्वरां नूं गाया। एक विद्वान ने बहुत ही सुंदर लिखा है, ये सत सुरां सानू कित्थों मिलियां हन, पंक्षियां दी आवाज तो सत सुरां सानू प्राप्त होईयां। सब तो पहला जदों विद्वानां ने साज सुर लभ्या है, तो साज सुर कित्थों मिलिया, उन्हां कहे मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ। जद मोर बोलिया जंगल दे विच, तो उन्हां ने मोर दी आवाज नूं साज सुर मन लिया, सा बन दिता। मोर हूं की बाणी को सुधार खर जबान दिओ, चातरक की आवाज से रिखब सुर भरी है। जदों चातर कपपिया बोलिया तो रे सुर लग्या, तो विद्वाना ने रे बन लिया, ये रे बन गई सा रे। चातर की आवाज से रिखब सुर भरी है, अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो, अजा मैंने भेड़ है, जदों भेड़ बोलदी तो गा सुर लगता है। अजा की आवाज से गंधार का उचार कियो, कूंज के कुरलाप से मध्यम सुर भरी है, जदों कूंज करलाउंदी है तो मध्यम सुर लगता है, मान सुर लगता है। कूंज के कुरलाब से मध्यम सुर भरी है, कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो बिद। जदों अंब दी डाली ते बैठ के कोयल कूकदी है ते फिर पंचम सुर लगदा है, कोयल हूं की कूक हूं ते पंचम बनायो बिद। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है, दादर मैंने डड्डू, जदों डड्डू बोलदा है ते दास सुर लगदा है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है, माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो। गजराज हाथी रंगून मैंने चीख, जदों जंगल दे च हाथी चीखदा है ते नी सुर लगदी है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो, इतनी निर्वाण सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुरां इस तरह कहियां हन। तो सतसंग जी, ये संगीत जो है इथों दे बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं, कीर्तन सीखते हैं। तो आप जी का सारे का फर्ज है, इत्थे जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है, बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं, क्लासीकल कीर्तन दे मन जोड़ते हैं। यह तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का, जो बच्चों कीर्तन दे नाल जोड़ रहे। आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे, रहत के बारे हुक्म होया सी कि दो शब्द रहत के बारे, अमृत के बारे जरूर लाने हैं। तो आओ बड़े प्यार